0: लंच ब्रेक, लंच लंच ब्रेक।
1: You know, ladies, it's time to show some real love, मेरे पिया।